असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वढ़ कमाए संख पापी पाप असंख कूड़े आर करे असंख मलेच माल पाए असंख निंदा।

कैसे कैसे रत्न तुम होंगे, कितनिया बाणी कितनिया बाणी कैसे पाप सुरेंद्र कितनिया सुक्ति नानक अंत।

कृता पुरुष निर्भो निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

संत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वह संत पापी पाप असंत नूर यार करे खुदाए संत मलेच मल पाए असंत निंदक करे पाप नानक नीच कहे क्या मारे न जावा एक जो तुम पावे सही परिपाक सदा सुना संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंत कहें सिर्फ।

रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन न जाई तेरी तिल वडियाई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वडियाईया तुद बिन सिद्धि किने न पाईया कर्म मिले नाहीं ठाक रहाईया आखण वाला क्या बेचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देह तिसे क्या चारा नानक सच सुवार नहारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरे मर जाऊं आखण औखा साचा नाऊं साचे नाम की लागे भूख

मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरा सुरहाउ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तासह मिल संग

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास, राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित वह उद्यम, जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु पाए, ता कारज को आगे कर तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सुतरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया, रहाव जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किस की तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भाव करिया।

सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा, सब त्याव है, सब त्याव है तुझी, हर सच्चे

सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना।

आँख बखाना। जो सेव है जो सेव है तुझ जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्याव है हर त्याव है तुझ जी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुक्त भये, जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी।

पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी प्याया, जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जानाही सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तेत सरवर ड

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना

प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो अवर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री आस तुझ जू करे हो रक्षा राख लिहो मुहे राखन हार।

पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तुमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार किस ही को हमारी सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी शिव कन को

चीटी ते कुंचरिया सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव।

जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहि भूपा अंदज जेरज सेतज कीनी उत पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरे सृष्टि दिखाए अचम भाव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रनकाता जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे पुरख जवन

काल निकट नह है। रक्षा हुई ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरहु, ताके ताप तन

दारिद दुष्ट दुख ते रहाओ, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी।

मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहु उबारी, सर्ब ठौर मोहु सहाई, दुष्ट दुख ते लिहु बचाई। सुवैया

मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जानियो। श्री सुबान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो ही बखाने दोहरा।

सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवां।

देखो पुंचै तिसका हुए उदारु। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारु। तम

वै हरिया तरस पया मेहरा मत हुई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थी वै हरिया पौड़ी जिथै तू समरथ जिथै कोई नाही उथै तेरी रख अग्नि उदर माही सुन कै जम के दूत नाई तेरे छड़ जाए पौ जल विखम सगाहू गुर शब्दी पार पाही जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं

0: ना विसारियन साध जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माही बिदारियन इस साहिब की टेक नानक मनै माही जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहि तिस साहिब की टेक नानक मनै माही जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर
1: तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में कोई ना जान तुमरा अंतर।

महाराज मेर करम जिन्हां दे अंदर हस्सा महला पंजवां गुरु अर्जन देव जी चरण कमल की आस प्यारे जिन्हां नूं तेरे चरणा दा आसरा बन जाए तेरे दर्शना दी तांग बन जाए। कहिंदे ने फिर गुरु एक ना एक दिन उन्हां नूं निवाज लैंदा है। जिवें जिंदगी भी कास है, मां नूं बच्चियां दा आसरा है, बच्चियां नूं मां प्यो दा आसरा है, बंदे नूं जिंदगी दा आसरा है। हर किसी ने अपनी अपनी सोच अनुसार प्लैनिंग जिंदगी दी सोचियां होईयां ने, बनाईयां होईयां ने। कुल मिला के जीवन जिंदगी भी एक आस है, आसरा है, पर कल दा पता कुछ नहीं। पर सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे ने जेड़े अपने जीवन विच ये भावना लैके आउंदे ने, सच्चे पातशाह नानक की अरदास सुनी जाए। धन गुरु नानक साहब जी महाराज गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह पंजवें नानक कहिंदे ने मेरी ये अरदास है मेरे हृदय विच, मेरे हृदय विच केवल नाम हृदय में दीजिए। इस हृदय विच होर सोचा ना होण, होर ख्याल ना होण, ईरखा द्वेष वड्डा छोटा ना होवे, जे होवे तां तेरी याद होवे, केवल नाम तेरे नाम दा आसरा होवे। सच्चे पातशाह जी कैसी बख्शिश कर रहे ने, नानक की अरदास सुनी जे केवल नाम हृदय में दीजे। जदों कोई ऐसी भावना बना के हाजरियां भरदा है महाराज किवें ना किवें उन्हूं अपना दर्शन बख्शिश करदे हन। भावना विच कोई कमी ना होवे, प्रेम विच कोई कमी ना होवे गुरु प्रति, ते सतगुरु फिर उन्हां नूं खुशियां नाल निभांदा है। तरस तेरे की प्यास मन ला, गाओ जी।

तिसका हुकुम बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंट पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिगन न लागै कोई। उस्त मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे सत बेवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले हे जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपी है हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड भागी तेजन जग माहे, सदा सदा हर की गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गने संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछान एत ओत कियो सोजी जाने, नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिन है निरंजन जानया, गुरप्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कह तो, सर्व रोग त्यो हर जन रह तो, आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ मैं सोई निर्बान, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिस की कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस न लागै दुख, जिस को हर प्रभ मन चेते आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तत सब बूझिया, जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल, नह किश जन्मै नह किश मरै, आपन चले तो आप ही करै, आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मैं आप, अनिक जुगत राच थाप उथाप, अविनाशी नाही किश खंड, धारण धार रहो ब्रह्मांड, अलख अपेव पुरख परताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सुभावंत, सगल संसार उदर है तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख बिसारण, आपे मेल लय कृपाल, गुरु का शब्द जप पय निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनो कृपा करै बड भागै, नाम जप तपावै विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान, जो किश करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभाए होवै सो होए, करणे हार पछाणै सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निधान उन्हों बने आए, आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान, सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जन नहार, जाकै सिमरन उदरिया, नानक तिस बलहार, अष्टपदी टूटे गांडन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप, आपन किया कछु न होए, जे सो प्राणी लोचै कोई, तिस बिन नाही तेरा किश काम, गात नानक जापो एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोहै, प्रभ की जोत सगल घाट सो है, धनवंता होए क्या को गर्भ है, जा सब केशो तिसका दिया दरबै, अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहतावै, जे को होए बहे दाता, तिस दिन हर जन गवार, जिस गुरप्रसाद टूटे हों रोग, नानक सो जान सदा आरोग, ज्यो मंत्र को थामै थमन, त्यों गुर का शब्द मन अस थमन, ज्यों पा खान नाव चाढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लागत निस तरै, ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास, ज्यो माह ध्यान मैं मार्ग पावै, त्यों साधु संग मिले जोत प्रगटावै, तिन संतन की बादशाह तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरत काहे दिल लगे, पूरब लिखिता लिखिया पाइए, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तुत सहित चितार, जो किश करे सुख मान, पूला काहे फिरे आजान, कौन बसता आई तेरे संग, लपट रहो रसलो की पतंग, राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत से पी कर जाहे।

कि जिस है पर आपत हुई खीन शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मध्य सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेटा समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन

आई। जिस मन बसे सुने लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ जीत। जन्म मरण ताका दुख दिवारे, दुर्लभ देह तत्काल उधारे। निर्मल सोवा।

कवण जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कलाम, इहो लिखा लिख जाने कोई।

चार जोर न जुगति छुट्टे संसार, जिस सत जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती ताप रखी धर्मसार, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उत्थै पाए, नानक गया जापै जाय, धर्म खंड कायो धर्म, ज्ञान खंड काय आखो कर्म, किते पवन पानी वै संतर, किते कान महेश, किते बरमे घाट घड़िए रूप रंग के वेश, कितिया कर्म भूमि मेर, किते किते धूप देश, किते इंद चंद सूर, किते किते मंदल देश, किते सिद्ध बुधनाथ, किते किते देवी वेश, किते देव जन मुन, किते किते रतन समुंद, कितिया खानी कितिया बाणी, किते पात नरिंद, कितिया सुरती सेव, किते नानक अंत नांत, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथे काड़त घड़िए बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया न जाहे, जी को कह पिछे पछताए, तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिन महराम रहया भरपूर, तिथे सीतो सीता महमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे, नाव हिमरे न ठागे जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथे

सत वसै केलो करै आनंद सच्चा मन सोई सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहार तिथै कंड मंडल वर भांड जी को कथै तंत अनंत तिथै लो लो आकार जीव जी हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करडासा जत पहारा धीरे सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला गंतपताओ भांडा भाव अमृत तटाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत का।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਿਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਤੋਜ ਕਹੀ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਨੀ ਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤਿਨ ਕਹਿ ਤੈ ਸਰਵ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ ਨਮਸਤੁੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤੁੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੁੰਗ ਭੇਕੇ ਨਮਸਤੁੰਗ ਲੇਖੇ ਨਮਸਤੁੰਗ ਕਾਏ ਨਮਸਤੁੰਗ ਜਾਏ ਨਮਸਤੁੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੁੰਗ ਭੰਜੇ ਨਮਸਤੁੰਗ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੁੰਗ ਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਢਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸ਼ੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਗਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਵਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਮੇ ਨਮਸਤਸਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸ ਜਬੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸ਼ੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਭਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤ ਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਵ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਚੰਤੁ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਦੇਹ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਣ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਭਰਣ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਝੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਧੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਭੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਭ ਹੈ ਅਜੰਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੂਕ ਹੈ ਅਸੂਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਵਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰੇਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਵ ਮਾਨੀ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੀ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਤੀ ਸਮਸਤੀ ਵਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸ੍ਰੋਂ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸ੍ਰੋਂ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸ੍ਰੋਂ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਅਭੇਖੀ ਅਭਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸ੍ਰੋਂ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੀ ਸੁਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ
नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वं परनासी अनुपे अरूपे स्मस्तु निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद कर्ता अदो उर्द अर्दंग अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग चेदी अपेदी अनामंग कामंग समस्त उपराजी समस्त स्तामंग तेरा जोर चाचरी चांद जले हैं तले हैं पीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपीस हैं कुजंग प्रिया चंद अगाध्य अबाध्य नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमस्तुंग निर्नाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साजे नमो साहसाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृष्टं नमो सर्वकृष्टं नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अकिज्जे अभिज्जे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदारित सिद्धं निवासी चरपड़ चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल चंत्व प्रसाद आद रूपण आद मूर्त जौन पुर कपारु सर्व मान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कूपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाक रूप रंग नरेक वाद पुरख उदार मूर्त जौन आद सेख देश और न पेश जाक रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुई फैलु अनुराग नाम काम बहीन पेख ताम हु नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदै मान ताही एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जानही जे भेद और कतेब रूप रंग न जात पासु जानी के जेब तात मात न जात जाकर जन मरण बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिकह जग जापी जे जाप आदेव नाद मूर्त तप्य सब जे ताप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्वरच्यो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो भरम रहत भूत लख अपेश अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन भंग नात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपारु सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जानी जे रूप रंग रेख परम भेद प्राण जाके नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मद पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार असन भंग उपमा नंगन भव प्रकाश निश्चिन नाश आजान बाहु साहन साहु राजान राजपानन पान देवान देवमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान कालन भूतांगा बापांगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वापरनाढ्य अंडन बाढ्य चाचरी चंद्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्णामे अकामे पुजंग प्रया चंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी चंद न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्मंग न काय जन्मंग जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र
प्रतिशयादिशयादृशयत्रिशय भगवती चंत्व प्रसाद कथते क्या चिज देशय क्या भिज भेषय क्या गंज कर मैं क्या भंज भर मैं क्या भिज लोक क्या दित सुख है क्या अवतूत वर्ण के विभूत करण कि राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुझा है कि आशोक वर्ण है कि सर्व अपर्ण है कि जगतं कृति है कि छत्रंग क्षत्रिय कि वर्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनुप है कि आद देव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीन है कि कै अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह कि पाक व्यैब है कि गै भूल गैब है कि फूल गुनाह है कि साहन उसाह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजक रही मैं कि कर्मंग करी मैं कि सर्वंग कलि है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज्य है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र विष है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कली में कि परमंग फही में कि आकल अलाम में कि साहिब कलाम में कि हुसन अल वजू है तुम आमल रजू है हमें सलसलाम है सलीकत मुदाम है गनी मुल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीन उल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनिकल तिरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल्क खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवंग स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैवला काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाद रूप है अनाथ स्वरूप है अनंगी अनाम मित्र भंगी त्रिका मित्र वर्गंग त्रिबादे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है छे जय छूत है कि नरकं प्रणास है पृथुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अभंग है अनंग है अपेख है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है भूत है अतूत है अनाश है उदास है धंद है अबंध है भगत है विरक्त है नाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटाह है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है नित्य है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंत प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंत्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिभंगी त्रिकामी निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सूत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते न साकं श्री कै मितु अमी कै सदैवं प्रभा है अजय है अजय है भगवती छंत्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमें सुलसलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चराग है कि कामल करी मैं कि राज करी मैं करो जी देहांद है कि राजक रहिंद है करी मुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनी मुल की राज है गरीबुल निवाज है हरिफुल शिकन है हिरासुल फिकन है किलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है गंजल गनी में रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है कि नरकंग प्रणास है बहसुल निवास है कि सर्बल गुवान है हमीसुल रुवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अधीशुल अलेख है हमीसुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अभंग है मद पार चंतु प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड
अनपवनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशिज अंग आसन अपांग उपमा पार गतमित उदार जल थल अमांड दिस्विश अपांड जल थल महंत दिस्विश बेअंत अनपवनास त्रितर तुरास आजान बाहु एक सुदाहु ओंकाराद कथनी अनाद कालखंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंशिज गात आजिज न बात अन झंज गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन डट अपारा डीठ धर्म अत ठीठ करम अनवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत व प्रसाद करुणालय है हर काल्य है कलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है जपा जप है तपा तप है कृता कृत है मृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी कृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता मृत है जपा कृत है मृता मृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम पर है कुरुणालय है नृप नायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्रया चंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तांसंग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलयकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रेनादंग विपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आश्वासे नमो बांक पंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनाश अकाश अगंज अपंज लख अपक अकाल दयाल अलेख अपेख नाम काम गाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्याचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासे सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासे करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विपूते गजायब गनिमे हरियंग करियंग करिमुल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते स्वयं पवसुभंग सर्व

सदायांग संगे अपंगं बेपूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रत्ती बिन एक रत्ती के मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप भली बिद न्यावत शीश न जात बिचारे इते भये तो कहा भय भूपतंत को नागे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत टोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविक भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पश्चिरी भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पिख है पौन आहार जति जतार सबै सुविचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रत्ती बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाद सुना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरूर मवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बटे बरियार बचार है सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सुएक दिवैया दानव देव फनेंद निशाचर भूत भविक भवान जपेंगे जीव जिते जल में तल में पल ही पल में सब ताप थपेंगे पुन पर तापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहुपुंज कपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र जिंदर निराद जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सची पत अंत पसे जम्फास परेंगे जे नर श्री पथ के प्रस है पगते नर फिर न दे तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ प्रियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बख्यान सु बैठ कैसे ही ऐसी सुबह सुबितायो साच कहूँ सुन ले हो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो काहू ले पान पूज तरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो अरवाची दिशा में काहू पचा को शीश निभायो खूब तान को पूजत है पस को मिर तान को पूजन तायो पूर क्रिया जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो खूब तान को पूजत है पस को मिर तान को पूजन तायो पूर क्रिया जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबू आप हाथ दै मुहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिय सबै रण कुआ संघरिय
पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाऊं सो तुम थे पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाद मुझे वरी है मरण काल का त्रास निवरी है हु जो सदा हमारे पच्छा श्री आसु तुझ जू करे हो रचा राख लि हो मुहिराख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बान दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की यो वेद राज ब्रह्मा जूती यो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचन उपजायो आदंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरे अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पाट पट की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तर्क तब दे अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सिर सब तार है आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरालम निरंकार निर्भकार निर्लंब वाद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भेहु आप अपनी बुध है जीती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के सजा प्रथम संसारा एक है रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कई पूपा अंडर जेर से तज की नियुक्त भुज खान पौर रच दीनी कहू फूल राजा हवे बैठा कहू सिमट भयो संकर कैठा सिगरी सिरट दिखाए अचम भव आद जुगा स्वरूप सोयम भव अपरक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठो तुत पाता सकल मलेश करो रण काता जी अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार दे है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताहि शुभ काला दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला कृपा दृष्टन जाहि निहरि हो ताके ताव तनक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट चाचव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल वास्ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारु कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी सर्व ठावर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को छय करता श्री अस्तो जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो याहे सुरसना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरताया वई दुख दर्द पौ निकड़ना तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पनी जय अर्ध सह सुन तीन कही जय पाद्र सुदेश मीरवारा तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते कुआंख तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न करो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

मत छुटे इहो अन असाडा छुटे तन छुटे फेड़ करेन मन जुठे चुल्ली भरेन ओ नानक सच ध्याई है सच होवे ता सच।

हे गुरु साहिब जी, एक ओंकार सत गुर प्रसाद अगम अपार अनंत गुर अवगत अलख अपेव पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सतगुर नानक देव सतगुर नानक देव देव देवी सब त्यावे नाद बाद बिस्माद राग रागुण गुण गावे सुन समाद अगाद साध संगत सपरंपर सपरंपर अवगत अलख अपेव आगमित अपरंपर अमें दृष्ट शुभ कराय हर अग पाप सकल माल काम करो दियार डोब मोह वास कर सब बाल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै गुर नावन दरियाओ जन्म हम कालक धोवै सो कहो टल गुर सेविया अह निस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हर की वडियाई हो आख ना सक हो मूर्ख मुग्ध नी जान जन नानक को हर

क्या पढ़िए क्या गुणिए क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलो सोई क्या पढ़िए क्या गुणिए क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलो सोई हर का नाम ना जपस गवारा क्या सोचे बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त आगोचर लहिया बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माना लोग ना भतीजा ना भतीजा तो क्या कीजा कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग

ये मन मेरे आतू हर नाल रहो तू मन मेरे अंगीकार ओह करे तेरा सबना गला समरथ स्वामी कह नानक मन मेरे साचे साहेबा करता तेरा सब कुछ है सदा सिफ

संत साजन पै सर से सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक। बोलना जी सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरक गुरु नानक लिंग त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याह जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नाम दयावे ताए सब थाई हुई साहे दसवां पातशाह। साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सब थाई सहसा पातशाह की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दित्ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां आरियां नाल चुराए गए चरखड़ियां ते चढ़े गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निवाही तिन्हां सिंघां सिंघणियां पचंगियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। अर्थ में सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचा रहा है देख देख पता है गर्द की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के इशनान क्योंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीमा मत उची मत पदा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाणा साहब ते होर गुरुद्वारे गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो जी। फेर माणिया के माण सतगुरु जी नताणिया के ताण सतगुरु जी ने ओठिया दी ओट धन धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾਸਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਬਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉਚਸਾਉਣਾ ਦਰ ਆਈ ਸਰਬਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਵਾ ਸਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ
अपने घरों में बैठियां लाइव कीर्तन कथा सुनते हैं गुरु गुरुद्वारा साहब वास्ते गुरु के सेवादारों वास्ते बेअंत माया ऑनलाइन भेटा कर रही हैं। सरबत साध संगत दियां शुभ नौकामना पूर्ण करनिया कार्य रास करने स्वास स्वास सिमल करवाना बख्शिया में दाता मिचों सरबत साध संगत वालों कड़ा प्रसादी देख सजा करके आप जी के पवित्र हजूरी हाजिर की जी आप जी दर प्रवान होए प्रवान्या प्रसाद सरबत साध संगत लिखे वरते जो शके स्वाब जी का पवित्र नाम सतनाम वाहिगुरू वाहिगुरु जपे दाता जी कृपालता करो पावन पवित्र हुक्मनामा बख्श करके पवित्र आशीर्वादा बख्शो पातशाह जी सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया आप जिया का नाम चित आवै सुख होवै नानक नाम चढ़दी कला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा गया पई अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिल बोच है राज करेगा खालसा ख्वार हुए सब मिलेंगे

दीनानाथ करुणापत स्वामी अनाथा की नाथ रहाउ। सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह निबहत जम कै पाथ। नाम निदान गाउ गुण गोविंद उदर सागर के खात। शरण सुमरथ अकथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ। नानक दीन धूर जन बांचत मिले लिखत धुर माथ। केदारा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

रहाओ। अधिक गर्त संसार सागर, कर दया चार हो तो होर। संत संग हर चरण बोहित, उतरते लै मोर। गर्भ कुंट मह जिन्हें धारियो, नहीं बिखै बन मह होर। हर सकत शरण समरथ नानक, आन नहीं निहोर। के

रहाउ, कर अनुग्रह आप राखेउ, न उपजतौ बेकार। जिस प्राप्त हुए सिमरै, तिस दहत नह संसार। सुख मंगल आनंद हर हर, प्रभ चरण अमृत सार। नानक दास शरणागति।

वह तिह कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक कोत। आठ पहर महाश्रम पाया जैसे बिरक

गुणा अच्युत सदा पूरन, नह दोख व्यापह कली रहाओ, गुर बचन कार्य सर्व पूरन, ईत ऊत नाहली, प्रभ एक अनिक सर्वत पूरन, बिखे अग्न न जली।

संतन संग जाता, संतन संग जाता पुरख विधाता, घट घट नदर निहालिया, जो सरनी आवै सर्व सुख पावै, तिल नहीं भन्ने कालिया, हर गुण निद गाए।

है जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चात्रिक बूंद प्यासिया कब रैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण प्रगासिया हर दर्स मन लागा दिन सुसुभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कहे बेनंती कत हर बिन प्राण टिकाही सास बिना ज्यों देहुरी कत शोभा पावे दर्श बिहू ना साध जन खिन टिकन न आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदिया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतहु न जाए निखेदिया हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक न मावे ओ कृपाल नानक के स्वामी हर चरण संग सुमावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा तारी निर्गुण नीच अनाथ मैं नहीं दुख विचार निर्गुण नीच अनाथ मैं नहीं दुख विचारे नहीं दुख विचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वचल सुन अंचलो गहया घट घट पूर समानिया सुख सागर उपाया सहज सुपाया जन्म मरण

विवर्जित हर पद चीनै सोई रहाओ। राजगुण तम गुण सतगुण कही है एह तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीनै तिन ही परम पद पाया। तीर्थ वर्त नेम सुच संजम सदा रह नहीं कामा। तृष्णा अर माया भ्रम चूका चितवत आत्म।

साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए भंडारी आपै रतन जवाहर मानिक आपै है पासारी आपै दह दिस आप चलावै निचल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पैडा ज्ञान गोण भर डारी कहत कबीर सुनहो रे संतो निभही।

जात सुभाव है सतगुरु भेटै एको नाम बखानी बलुआ के करुआ मह बसते फुलवत देह के आने कहो कबीर जय राम न चेतेउ बूढ़े बहुत सियाने टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे पीरे खान पाऊ भगत स्यों काज न कछुए मेरो काम दीवान।

इतनक खटिया गठिया मटिया सांग ना कच ले जाए राव। देहरी बैठी मेहरी रोवे द्वारे लव संग माए मरहट लग सब लोग कुटुंब मिलो।

खट कर्म कुल संयुक्त है, हर भगत हृदय नाही, चरणार बिंद न कथा भावे। सुपा

कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभंगुर प्रसाद। तुझते बाहर किछु न होए, तू कर कर देखह जान है सोए। क्या कही है किछ कही न जाए, जो किछ है सब तेरी रजाई रहाओ। जो किछ करना सो तेरे पास, किसी आगे की

करे कराई जाने आप, नानक दिखे थाप उथाप। इको अंकार सतगुर प्रसाद, राग भैरो महला पहला घर दूजा। गुर कै शब्द तरे मुन केते, इंद्रादिक ब्रह्माद तरे। सनक सनंदन तपसी जन केते, गुर प्रसादी पार परे। पवजल बिन

जर जीतिया सिर कालो, रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोटे जम जालो, प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कबहू न छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ।

बहरे करण अकल भई होछी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझिया, रह उदास आस निराशा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी। पैरो महला पहला, पूंडी चाल चरण कर खिसरे, तुचा दे कुमलानी, नेत्री तुंद करन पय बहरे, मन मुख नाम न जानी, अंदुले क्या पाया जग आए, राम हृदय नहीं गुर की सेवा, चाले मूल गवाए रहाओ। जिहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु पए कदे हो हे नानी के, अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मिलाए, जब लग शब्द भेद नहीं आया।

गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा। पैरू महला पहला, सगली रैन सोवत गल फाही। दिन स जंजाल गवाया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया। जिने हो जगत उपाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी। क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपहु गुणकारी। रहाओ ऊंदो कवल मन मुख मत होची, मन अंदै सिर धंदा। काल बिकाल सदा सिर तेरे, बिन नावै गल फंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंदुले, शब्द सुरत नहीं पाई, शब्द सुरत नहीं पाई। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंदलो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ

लाइए मन रे राम भगत चित लाइए गुरमुख राम नाम जप हिरदय सहज सेती घर जाइए रहाओ।

को मुक्त न पावस डूब मुए बिन पानी। धंधा करत सगली पथ खोवस परम न मिट सगवारा। बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद पसारा। अकुल निरंजन।

रहाओ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे, संध्या कर्म तिकाल करे, बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करे, राम नाम बिन शांत न आवे। जप हर हर नाम सुपार करे, जटा मुकुट तन

सतगुर प्रसाद। जात का गर्व न करियह कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण हुई। जात का गर्व न कर मूर्ख गावारा, इस गर्व ते चल है बहुत विकारा। रहाओ

कहो बिद भांडे घड़ै कुमारा, पंच तत् मिल देही का अकारा, घट वध को करै बिचारा। कहत नानक इहो जीव कर्म बंद होई, बिन सतगुर भेटे मुक्त न होई। पैरो महला तीजा, जोगी ग्रही पंडित।

सोए, जमै काले ते छूटे सोए, कहत नानक जन जागे सोए, ज्ञान अंजन जाकी नेत्री हुए, पहरो महला तीजा, जा कौ राखे अपनी सरनाई, साचे लागे साचा फल पाई, रे जन कैस्यों करो पुकारा, हुक्मे हुआ हुक्मे वरतारा, रहाओ इहु आकार तेरा है तारा, किन मैं बिनसै करत न लागै बारा, कर प्रसादिक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया, कहत नानक मार जीवा ले सोए, ऐसा बूझो परम न भूलो कोए, पैरो महला तीजा, मैं कामण मेरा कंत करतार, जेहा कराए तेहा करी सिगार, जा तिस भावै ता करे भोग, तन मन साचे साहिब जोग, रहाओ पुस्तक निंदा करे क्या कोई, जा आपे वरतै एको सोई, गुर प्रसादि पिरम किसाई, मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई, पंत नानक करे क्या कोई, जिसनु आप मिलावा सो, जिसनु आप मिलावै सोई।

गुरमुख राम नाम चित लाया, ज्ञान अंजन सतगुर ते हुए, राम नाम रव रहे आ त्यो लोए। कलयुग

गुर प्रसाद जब आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक खुशी सत्य सोचे सोच न हो गई।

अंत मूर्ख अंत घोर अंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गल वाय संत पापी पाप असंत मूड़े आर करे संत मलेश मार पाए असंत निंदक करें।

कर निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

संत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत मूर यार संत मलेच मल पाए असंत निंदा।

सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सवै कच्छ पाई उथ पाए नानक गया कर्म खंड का।

निरंतर निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कलवड़ हत्या कमाए अशंख पापी पाप अशंख मूर्ख यार करे खुदाए अशंख मलेच्छ मल पाखाए अशंख निंदा

अमोल धर्म अमोल दीपान अमोल फल अमोल प्रमान अमोल भक्ति अमोल निशान अमोल धर्म अमोल प्रमान अमूलो अमूल आख्या न जाए आख आख रहे।

निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक तुसी सत सोचे सोच न हो गई

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख गल वाय संख पापी पाप असंख मूड़ यार करें संख मलेच मल पाए असंख निंदक करें नानक नीच कह बारे जा जो कुछ पावे सही परिकार।

निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक उसी सत।

अशांत मूर्ख अंधोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवट हृदय कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़े आल करे फिर अशांत मलेच माल पाठाए अशांत निंद

पे गाया ए साला नी थाला है ए नदिया पे बाह कौन सोम ना जान समुद्र सा सरता गिरी कुल नौनी अंत न सुनी कहना अंत न करना देना अंत न देखना सुन

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी सत्य सोचे सोच न हो गई

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर करता है असंत कालवड़ हत्या कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आर करे बुरा है संत मलेच माल पाता है असंत निंदक

0: काला भी काला है इतनी नदियां से बाहर कौन सोमना जान समुद्र सा करता गिरी कुल नौवनी
1: अंत न सुनी कहना अंत न करने देना अंत न देखना सुनना।

ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण कत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृता सर्व शब्दं एक शब्दं जेका जाना पेयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्णन सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा वास देव दस्या जेको जाना पेयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पढ़िया हो वह गुर अहंकार ता उमी साधना मारिए जेहा का लेकालना तो वे हो ना उपचारिए ऐसी कला ना खेडिए जिदर के गया हारिए पढ़िया

साम कहे सतम्बर स्वामी समय आछे साच रहे सबको सच समावे रिक कहे रेहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर न लइए परा छत जाहे नानक तो मोख अंतर पाहे जुजवै जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादव पिया पार जात गोपी लय आया बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ नौ खदाई अलो पेया नील वस्त्र लह कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया चारे वेद होए सचार पढ़े गुण तिन चार विचार भौ भगत कर नीच सदाए तो नानक मोख अंतर पाए पौड़ी सतगुर बिटो बारिया जित मिरी खसम संभालिया जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिया नीति जगत निहारिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रिया सतगुर है वो हिता बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मोच आवे आस करे जाहे निरासे केता फल फिके फुक बक पके कम न आवे पत मिठत नी वी नानका गुण छके आईया तत सबको निवे आपको पर को निवे न कोए तत राजू तो लिए निवे सगौरा होए अपराधी तूणा ने में जो हंता मिर गाहे शीशन वाई क्या थी जर रेख सुद जाहे महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस भगत समादंग पुख झूठ भभूख अनुसारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिक ललाटिंग दो धोती वस्त्र कपाटिंग जय जानस ब्रह्म करमम सफूकट निश्चयो करमम पह नानक निश्चय त्यावे बिन सतगुर पाठ न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा है अपना आप।

रहा ब्रह्मपाति बिशन डारी फूल शंकर देओ तीन देव पर तख तोरा करे किसकी से ओ पखानगढ़ के मूर्त कीनी देख छाती पाऊ जेहे मूर्त सच।

मालन भूली जग भोलाना, हम भोला ने नाही कासवीर, हम राम राखे कृपा कर हर राय आसा। बारह वर्ष बालपन बीते, बीस वर्ष कुछ तपना कियो, तीस वर्ष कुछ देव न पूजा, फिर पछताना व्यर्द प्यो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, साहिर शोक भुजंग भलियो रहो। सूखे सर्व पाल बंदावे, लूणे खे थर बार करे, आया चोर तरन तो लह गए, मेरी राखत मुक्त फिरे। चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जीवा बचन सुध नहीं निकसे, तहुरे धर्म की आस करे।

विनाश पांच दोख साध जा मैं ताकि केतक आस माधो विद्या हित कीन विवेक दीप मलीन राव त्रैगत जौन चेत संभव पन पाप सोच मानुख अवतार दलव तिही संगत पोच जी जंत जहा जहा लग कर्म के बस जाए काल फास अब्द लाग गए कछु न चले उपाय रविदास दास उदास ताज परम तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पै हरण परमानंद करो निदान आसा संत तुजी तिन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जन संत से देवा देव संत ची संत संगत संत कथा रस संत प्रेम माझा दीवे देवा दीजे देवा देव राव संत आचरण संत चो मार संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंता मन लखी जणी लखावो संत पापी सन रविदास भणे जो जाने सो जान संत अनंत है अंतर नाही संत अनंत है अंतर नाही आसा तुम चंदन हम अरेंड बापरे संग तुम्हारे बासा नीच रूख ते उच पय है गंध सुगंध निवासा माधो सत्संग संत तुम्हारी हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ तुम तील सुतूल सुपे सपील हम अपरे जस कीरा संसंग मिल रही है माधो जैसे मधु कीरा जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा राम नाम की सेवना कीनी कह रविदास जी मारा सा कहाँ पै हो जाओ तन पयो छिन छन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरविंद पवन मन पान करत पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपत पटल माया धन ता मैं मगन होत न तेरो जन प्रेम की जेवरी बाद्यो तेरो जन कह रविदास छुटवो कवन गुण आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर जागर जन्म जन्म के काटे फागर निमित नाम दे दूध पियाया तो जग जन्म मरण संकट नहीं आया

और प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पूतरा कैसे नचता है, देखे देखे सुने बोले दौरियो फिरता है राव का। जब कछला पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोवण लगता है। मन बच क्रम रस कसै लोभाना बिस गया जाए, कहूं समाना कह रविदास बाजी जग भाई बाजी गर सौ मोहे प्रीत बने आई। आसा बाणी धन भगत धने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमत फिरत ब जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीरे। लालच बिख काम लभद राता, मन बिसरै प्रभ हीरे रहो। बिख फल मीठ लगे मन उचरै, बिख फल मीठ लगे मन बौरे। चार विचार न जान्या, गुण ते प्रीत बड़ी अनपाती। जन्म मरण फिर तान्या, जुगत जान नहीं हृदय निवासी। जलत जाल जल फंद परे, बिख फल सांच परे मन ऐसे। परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया। ज्ञान ध्यान मान मन एक मैं, प्रेम भक्त प्राणी सुख मान्या जान्या। त्रिवता गाने मुक्त पाए, जो समाय समानी जा कह। शिली प्रभ पहचान्या, धन धन पाया धरनी धर। मिल जन संत समान्या, महला पंजमा गोविंद गोविंद गोविंद। संग नाम दियो मन लीना, हर धाम कोशी करो होयो लखीना राव। बुनना तनना त्याग कह, प्री चरण कबीरा। नीच कुला जुला हराओ भयो गुणी गहीरा। रविदास भगवंता ढूर नित्या की माया, प्रगट होआ सा संग हर दर्शन पाया। सैन नाइवत कारिया, कर कर सुनिया हृदय वसिया पार ब्रह्म। भगता मैं गणिया, ए बिद सुन कै जाट रोठ। भगती लागा मिले प्रतख गोसाइया, तन्ना वडभागा। रे चित चित सकीना, दयाल दमोदर बिबह ना जानस कोई। जे धावे ब्रह्मांड खंड कौ, करता करे सोई राव। जननी केरे उदर उदक, मैं पिंड किया दस द्वारा। दे आहार अगन मैं रखै, ऐसा खरमा खसम हमारा। कुंभी जल माहे तन, तिस बाहर पंखी पंख खीर नित नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर, समझ देख मन माही। पाखण कीट गुप्त होए रहता, ताचो मार्ग नाही। कहे तन्ना पूरन ताहू को, मातरे जी डराही। आशा शेख फरीद जियो की बाणी, क्योंकार सतगुर प्रसाद। दिलो मोहब्बत जिन सही सचया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचया। रते सुखदाई रंग दिदार के विसरिया, जिन नाम ते भोए भार थिए राओ। आप लिए लड़ लाए दरवे से, तिन धन जिने दी माओ आए सफल से। परवतकार पारा गम बेअंत तू, जिना पिछाता सच चुमा पैर मुंह। तेरी पने खुदाई तू बखसंदगी, शेख फरीद खैर दी जय बंदगी। आसा बोले शेख प्रीत प्यारे, अल्लाह लगे तनो सीखा कने माणी। गुर करे आज मलावा शेख फरीद, ताकम कुंजड़ियां मनो मचिंदड़ियां। राहो जे जाना मर जाइया, घुम ना आइया। झूठी दुनिया लग न आप गवाई, वजाइए बोलिए सच धर्म। झूठ न बोलिए जे गुर दसे वाट, मरीदा जोलिए चल कंधे पार। गोरी मन धीरिया, कंचन बन्ने पासे कलवत चीरिया। शेख हयाती जग न कोई थिर रया, जित आसन हम बैठे केते बैस गया। कत्तक कुंजा चेत डाओ, सावन बिजलियां। सियाले से होंदियां पर गल बाहड़ियां। चले चलन हार विचारा ले, मनो गढ़ेंदियां छे माए तड़ंदियां।

ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता के वासा वहां छोड़ धर्म में आया चित्र साहब सुंदर भाग मंदिर संगना का सुन जाया अवर साव मिथ्या लोभ लभी गरपुर दियो अर नामा जी को हवस फभी रहाओ कश्मीर बंदव सतपाई सागमंता रचर हसया जवानती अवसराय बण दो है उन पेखत ही काल गरसया कर करन अर्थ व्या जी सम पैसो न रूपा दामा पहाड़ी को पहाड़ा मिलया हो सगल भयो बेरा न है वर गैवर रथ संभाए गहो कर कीने मेरे जबते होई लांबी ताई चले नाही एक पैरे नाम धन नाम सुख राजा नाम कुटुंब सहाई नाम संपत गुर नानक कौ दीन उमरे न आवै जाई गुजरी महला पंजमा तिपते घर दूजा क्यों कार सतगुर प्रसाद दुख बिनसे सुखिया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निधान सतगुर दड़ाया बिस ना आवै जाई हर जप माया बंधन टूटे पे कृपाल दयाल प्रभ मेरी

वास है सब किसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है निश्चल धन धीरा, कृपा ते हर मन वसै भेटै गुरसूरा, गुणवंती सलाया सदन थिर निश्चल हर पूरा। सलोक महला तीजा। त्रिग तिन्हां दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुख होमै पाप कमाए, मन मुख ज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ न कई पाए। हरत पलत होए सुख न पावै, अंत गए पछताए, गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमै विचो जाए। नानक जिस पूरब होवै लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मन मुख उदा कौल है, ना तिस भगत न नाओ, शक्ति अंदर वरतदा कूट तिसका है उपाओ, तिसका अंदर चित न पिजई मुख फीकाया लाओ। ओए धर्म रलाए ना रलन, ना अंदर कूड़ सुआओ, नानक करता है बंत बनाई। मन मुख कूड़ बोल बोल डुबे, गुरमुख तरे जप हर नाओ। पौड़ी। बेन बूजे वड्डा फिर पया, फिर आवै जाई, सतगुर की सेवा ना कीतिया, अंत गया पछताई, अपनी कृपा करे गुर पाई है विचो आप गवाई। तृष्णा भुख विचों उतरै, सुख वसै मन आई, सदा सदा सलाही है हिरदय लिवलाई। श्लोक महला तीजा। जे सतगुर सेवे अपना, तिसनों पूजे सब कोए, सब ना उपावा सिर उपाओ है, हर नाम प्राप्त होए। अंतर शीतल सांत वसै, जप हिरदय सदा सुख होए, अमृत खाना अमृत पहनना, नानक नाम वडाई होए। महला तीजा। ए मन गुर की सिख सुन, हर पावै गुणी निदान, हर सुखदाता मन वसै होमै जय गुमान। नानक नदरी पाई है तायां दिन लागै ध्यान। पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, द्रोह कपट विकार गया मन सहजे जीता, तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता। आन दिन हर के गुण रवै गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्राह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, जे आन दिन हर लिव लाए, सतगुर पुछे सह संयम कुमावै हो मैं रोग तिस जाए। हार गुण गावै गुण संग्रह ज्योति ज्योत मिलाए, इस युग में विरला इस युग में को विरला, ब्रह्म ज्ञानी जी हो मैं मेट समाए। नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे आन दिन हर नाम त्याए। महला तीजा। अंदर कपट मन मुख ज्ञानी, रसना झूठ बुलाए, कपट की तय हर पुरख न पी जाए, नित वेखै सुनै सुभाए। दूजे पाए जाए जग प्रबोधै, बिख माया मोह सुवाए, हित कमाणै सदा दुख पावै, जमै मरै फिर आवै जाए। सहसा मूल न चुकई विच विष्टा पचै पचाए, जिसनों कृपा करे मेरा स्वामी तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम त्यावै हर नाम गावै, हर नामो अंत छिड़ाए। पौड़ी। जिन्ना हुक्म नायुन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार, हर की सेवा चाकरी सच्चा शब्द प्यार। हर का महल तिनी पाया, जिन्हो मैं विचो मार, नानक गुरमुख मिल रहे जब हर नामा उतार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख ध्यान सहज धुन उपजाय, सच नाम चित लाया, गुरमुख आन दिन रहे रंग राता, हर का नाम मन पाया। गुरमुख हर वेखै गुरमुख हर बोलै, गुरमुख हर सहज रंग लाया, नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवै, तिमर ज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनों कर्म होवै तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम त्याया। महला तीजा। सात गुर जी नाना सेवियो, शब्द न लगो प्यार, सजे नाम न त्याया किताया संसार, फिर जूनी पाईया विष्टा सदा खुआर, कूड़ा लालच लगिया ना उरवार न पार। नानक गुरमुख उबरे जे आप मेले करतार। पौड़ी। भगत सच्चे दर सुंदे सच्चे शब्द रहाए, हर की प्रीत

वाह वाह गुर सिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए, वाह वाह करे से जन सोने हर तिन कै संग मिलाए।

वाह वाह साहेब सच है अमृत जाका नाओ जिन से व्या तिन फल पाया हो तिन बलिहार जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो दे सुखाए वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुर सिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावै नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ न आवै। पौड़ी हार जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी सतगुर ते सच पछाणी है सच सहज समाणी आंदे जागे ना सवै जागत रहन विहानी गुरमती हर रस चाखिया से पुन पराणी बिन गुर किने ना पाए।

वाहो वाहो अमृत नाम है गुरमुख पावा को, वाहो वाहो कर्मी पाई है आप दया कर दे नानक, वाहो वाहो गुरमुख पाई है अंदर नाम ले महला तीजा। बिन सतगुर सेवे सांत न आवे दूजी नाही जाए, जे बते बहुतेरा लोचिया।

आसा करता जगमुआए आसा मरै न जाए नानक आसा पूरियां सच्चे सिओ चित लाए महला तीजा आसा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो लै जाए नानक ने चलको नहीं बाजो हर कह नाए पौड़ी आपे जग तो पाई ओन कर पूरा थाट आपे साओ आपे बनजारा आपे ही हर हाट आपे सागर आपे बोहता आपे ही खेवाट आपे गुरचिला है आपे आपे दसे काट जन नानक नाम ते आए तू सब किल विक काट सुद राग गुजरी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पंजवा अंतर गुरे आराधना जेवा जप गुरनाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरनाओ सतगुर से तीरत्या दरगह पाई ठाओ कौ नान कृपा करे जिसनों ए वस दे जग में उत्तम काढ़िए विरले के महला पंजवा रखे रखना आर्या पुबारिया ना गुर की पैरी पाए काय सुवारिया ना हो आप दयाल मनो ना विसारियन साजना के संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बेदारियन ते साहिब की टेक नानक मनाय माहे जे सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे पौड़ी अकुल निरंजन पुरख गम अपारी है सचो सचा सच सच निहारी है कूड़ न जापै किछ तेरी धारी है सब सहदे दातार जे ते उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पव जल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस भाग मथारी है तेरी गात में लखी न जाए हो तुद बलिहारी है श्लोक महला पंजवा जा तो तुसै मेहरवान चिंत वसह मन आ माहे जा तो तुसै मेहरवान नौनिद घर में पाए जा तो तुसै मेहरवान ता गुर का मंत्र कमाहे जा तो तुसै मेहरवान ता नानक सच समाहे महला पंजवा किती बहन बहने मुच वजायन वज नानक सचे नाम बिना किस न रहिया लज पौड़ी तुद ध्यान वेद कते बा सन खड़े गणती गणी न जाए तेरा दर पड़े ब्रह्मे तुद ध्यान इंद्र इंद्रासना शंकर बिष्णु अवतार हर जस मुख पणा पीर पिकाबर सेख मसाए कौलिए ओत पोत निरंकार घट घट मौलिए कूड़ों करे विनाश धर्मे तगिए जित जित लाए आप तित तित लगी है श्लोक महला पंजवा चंगे आई आलक करे बुरे आई होए सिर नानक अज कल आवसी गाफल फाही पेर महला पंजवा कितिया कुटंग गुजा थिए नहित नानक तैसा ढकिया मन में सच्चा मित पौड़ी ओ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया नौनिद पाई राज जीवा बोलिया अमृत नाम निदान दासा कर कणा तिरक तिसकै संग निहाल श्रवणी जस सुना कमावा तिनकी कार शरीर पवित होए पखा पानी पीस बिकसा पैर धोए आपो कछु न होए प्रभ नदर निहाली है मोह निर्गुण दिच्छै थाओ संत धर्मशाली है श्लोक महला पंजवां

प्रेम पटोला तैसा दिता ढक्कन कुपत मेरी दाना बिना साई मैंडा नानक सार न जाना तेरी महला पंजवा तैं डै सिमरन हाप के छलदम बिखम न डिठम कोई जिस पत रख सचा साहेब नानक मेट न सकै कोई पौड़ी हो वै सुख घना दई है वही रोगा कान हर गुण गाई है अंदर वरतै ठाड़ प्रभ चित आई है पूर्ण होवे आस नाए मन वसाई है कोई न लगे बिघने आप गवाई है ज्ञान पदार्थ मत गुरते पाया तिन पाए सबे थोक जिस आप दिवाई है तू सबना का खसम।

जाको पै कृपाल प्रभु हर हर सहिज पात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों भेटत संग संगात महला पंजवां राम रमो बड़ भागी हो जल थल मई अल सोए नानक नाम आराध्या बिघन लागे कोए पौड़ी भगतां का बोलिया प्रवान है दरगह पवै थाए भगतां तेरी टेक रते सचनाए जिसनो ए कृपाल तिसका दुख जाए भगत तेरे दयाल ओना मेहर पाए दुख दर्द वड रोग ना पोहे ते समाए भगताए उधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रहण इको एक त्याए पीवत अमृत नाम जल नामे रहे अगाए सलोक महला पंजवां कोट बिगण ते सलागते जिसना विसरै नाओ नानक आन दिन बिलपते ज्यों सुनिया कर काओ महला पंजवां प्री मिलावा जाती है साई सुहावी रुत कड़ी मोत न विसरै नानक रवि नित पौड़ी सूर बीर वरियाम किन न होड़ी है फौजस्तानी हाट पंचा जोड़ी है दस नारी अवतूत देन चमोड़ी है जिन जिन जिन जिन लैन रलाए एहो एना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किने न मोड़िए परम कोट माया खाई कहो केत बिद तोड़िए गुर पूराया राध बिखम दल फोड़िए हो तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़िए सलोक महला पंजवां किलवक सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवां नानक सतगुर भेटिया पूरी होवे जुगत हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे होवे मुकत पौड़ी सो सतगुर धन धन जिन परम गढ़ तोड़िया सो सतगुरु वाह वाह जिन हर स्यों जोड़िया नाम निधान खुट गुर देव दारू महारोग विकराल तिनै बिदारू पाया नाम निधान बौद्ध खजानिया जिता जन्म अपारिया पछानिया महिमा कही न जाए गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेसर अपरंपर लख अपीव श्लोक महला पंजवा उदम करेंद्या जियो तू कमावद्या सुख पुंच त्याएंद्या तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत महला पंजवा शुभ चिंतन गोबिंद रमण निर्मल साधु संग नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी तेरा कीता होए तकाहे डरपी है जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अरपी है आइए आइए चेतन हाल साहेब बेसुमार तिसनो पोहे कमण जिस वल निरंकार साब किच तिस कै वस न कोई बाहरा सो भगता मन उठा सच सुमाहरा तेरे दास आयन तुद तू रखण वालिया सिर सबना समराथ नदर निहालिया श्लोक महला पंजवा काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार महला पंजवा खांद्या खांद्या मोह कठा कठा पैनंद्या सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीविया जिन सच न लगो रंग पौड़ी ज्यो ज्यो तेरा हुक्म तिवै त्यो होवना जय जय रखै आप त जय खड़ोवना नाम तेरा कै रंग दुरमद सोवना जप जप तुद निरंकार भरम पौ खोवना जो तेरा रंग रते से जोन न जोवना अंतर वार एक नैण अलोमना जिनी पछाता हुक्म तिन तिन कदे न रोमना नाव नानक बख्शीस मन माहे परोमना श्लोक महला पंजवा जीव दया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ जीव दया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ो खाक नानक दुनिया संग उदारिया साकत मूड न पाक महला पंजवा जीवन दया हर चेत्या मरन दया हर रंग जिन पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी आद जुगादि आप रखण वालिया सच नाम करतार सच पसारिया ऊणा कही ना होए कटे कट सारिया मेहरवान समरथ आपे ही घालिया जिन मन उठाया आप से सदा सुखा लिया
ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਏ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਦ ਮਧ ਅਰੇ ਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖਿਆ ਸਾਦਾ ਸੰਗ ਅਪਾਰ ਆਂਦਨ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਾਏ ਮਨੋਰਥ ਸਭ ਜੋ ਨੀ ਨ ਭਵੈ ਸਭ

तेसनो मन वसाए जिन उपाया, जिन जिन ध्याया कसम तिन सुख पाया। सफल जन्म परवान गुरमुख आया, हुक्म बुझ निहाल खसम फुरमाया। जिस होवा कृपा जिस होवा आप कृपा, सुनह परमाया। जो जो दिता खसम सोई सुख पाया, नानक जिस दयाल बुझाए हुक्म मित। जिस बुला पुलाए आप, मार मार जमै नित पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिंटी करना दिते, प्रभदास का दुख ना खाव सकै फड़ जो नी जुते। मथे वाल पिछाड़ियन जम मार्ग मुते, दुख लगे बिलाणिया नरक कोर सुते। कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते, श्लोक महला पंजवा। राम जपो वड भागी हो, जल तल पूर्ण सोए। नानक नाम ते आई है बिघन न लागे कोए, महला पंजवा। कोट बिघन ते सलागते, जिसनों विसरै नाओ। नानक आन दिन बिलपते, ज्यों सुनै कर काओ पौड़ी। सिमर सिमर दा तार मनोरथ पूरिया, इच पुनी मन आस गए विसूरिया। पाया नाम निदान जिसनों पालदा, जोत मिली संग जोत रहा कालदा। सुख सहज आनंद बुठे तित घर, आवन जान रहे जन्म ना तहा मार।

कबीर जियो का चौपदा कर दूजा। चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है, उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हार बिन बैल बिराने हुई है, फाटे नाकन टूटे कादन कोदो को पुस खई है। रहाओ सारो दिन डोलत बिन मैया, अजो न पेट अगई है। जन भगतन को कहे न कहो न मानो, कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो, अनेक जोन परमई है। रहत जन्म खोयो प्रभ बिसरियो, एह अवसर कत पई है। भ्रमत फिरत तेलक के कप, ज्यो गत बिन रहन बिहाई है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछताई है। गुजरी घर तीजा मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीव है रघुराई। तन नाम बुरना सब सजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। जाब लग तागा बाहो बेही, तब लग बिसरा राम स्नेही। ओछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लहो मैलाहा। कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो राज देह तक मन बढ़ाई, जो भीख मंगावै ता क्या घट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बौर न होए तेरा आमन जान। रहाओ सब तय उपाई परम भुलाई, जिस तू देवै तिसै बुझाई। सतगुर मिले सतगुर मिले ता सहसा जाई, किसो पूजा किसो पूजो दूजा नदर न आई। एक है पात्र की जय पाओ, दूजे पात्र तरिया पाओ। ज्यो देव त्यों पी देवा, कह नाम देव हम हर की सेवा। गुजरी महला पहला मलै न लाछै पार मलो, पर मलियो बैठोरी आई। आवत कि न पेक्यो कमने जाने री बाई, कौन कहे किन बुझी बूझी है रमैया कुल री बाई। रहाओ जो आकाश है पंखी लो, खोज निरख्यो न जाई। जो जल मा जाय माछलो, मार्ग पेखणो न जाई। जो आकाश है कड़ू कड़ूवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिन तीन जरिया। गुजरे श्री रविदास जी के पदे करती जाए, ओंकार सतगुर प्रसाद। दूध सा बछरा थनो बिटार्यो, भूल भवर जल मीन बिगार्यो। माई गोविंद पूजा कहा लचरावो, अवर न फूल अनूप न पावो। रहाओ मैला गर बेरे है पुयंगा, बेखे अमृत बसा एक संगा। धूप दीप नहीं बेदा बासा, कैसे पूज कर है तेरी आसा। मन पन अर्पो पूज चिरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोचन जियो के पदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अंतर मल निर्मल नहीं कीना, बाहर पेख उदासी। हृदय कमल घट ब्रह्म न चीना, काहे भया सन्यासी। परमे पूली रे जय चंदा, नहीं नहीं चीनिया परमानंदा। रहाओ घर घर खाया पिंड बधाया, किंथा मुंदा माया। भूम सान की पसम लगाई, गुरबिन तत न पाया। काय जपो रे काय तपो रे, काय बिलो वो पानी। लख चौरासी जन्यो पाई, सो सिमरो निर्वाणी। काय कमंडल का पड़िया रे, अड़सठ काय फिराही। बद त्रिलोचन सुन रे प्राणी, कान गिन गाह की पाही। गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता मह जे मरे। सर्प जोन वाल वाले उतरे, अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे। रहा अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता मह जे मरे। बेसवा जोन वाल वाले अवतर है,
अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता महजे मरै सूकर जून वाल वाल अवतर है। अंत काल जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता महजे मरै प्रेत जून वाल वाल अवतर है। अंत काल नारायण सिमरै ऐसी चिंता महजे मरै बदत तिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वाके हृदय बसै। गोजरी श्री जय देव जियो का पदा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमाद पुरख मनो पिमंग सत्याद भाव रतंग परमाद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्व गतंग। केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग नंद नोत जस मरणेन जन्म जराद मरण पहियंग। रहाव इच्छस जमाद पराभ्यंग जस स्वस्थ सुकृत कृतंग पावभूत भाव समभ्यं समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं। लोभाद दृष्ट पार गृहं जादे भेद आचरणं ताज सकल दोह कृत दुर्मति पाज चकर तार शरणं। हर पवित निज नेह केवला हृद कर

जय देव आयो सास सपुटं पावपूत सर्वगतं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।

सत निर्भौ निर्वै अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वाए संख पापी पाप असंख कूड़े आए संख मलेच मल पाए असंख।

तत्पुर निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

संत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गल वह संत पापी पाप असंत कूड़े आए फिर संत मलेर मर पाप है असंत निंदक करें पाप नानक नीच कह बारे न जावा के जो कुछ पावे सही सही कर सदा सुना संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंत कहें सिर्फ।

सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सवे में कच्छ खाई उत्थ पाए नानक गया कर्म खंड का एहो।

कृता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कल वाय शंख पापी पाप अशंख कूड़े आर करे सुधाए अशंख मरेश मर पाए अशंख निंदक करे पास नानक नींद कह मारे न जावा जो तुम पावे सही परिकार।